0: रहमान भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: அப்படிங்கிற அந்த யூனிகார்னோட பேரை தான் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன தகவலை இன்னைக்கு நாம என் கேள்விக்கு என்ன பதில் நிகழ்ச்சி மூலமா நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்.
1: अरे मोहन भाई काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

त्रिलोचना खड्वांगादि प्रकरणा वदनीक संविता पायसान्न प्रिया तस्था पशुलोक भयंकरी अमृतादि महाशक्ति संवृता डागिनीश्वरी अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदन